रॉबिन हुड मानते हैं, क्योंकि वो अमीरों से लेता तो है पर गरीबों को देता कुछ नहीं, देता कुछ नहीं, देता कुछ नहीं।

बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। लंका में लंकेश्वर आके तेग तीर शमशीरों से चले अयोध्या राम पलट के वीरों से रणधीरों से अधरों पे मुस्कान धरी भुजा पे अपनी बाण धरा जय जय जय जय राम हुई और लंका में लंकेश मरा। राम चले तो सेव कपराता साथ चले गाँव गाँव में राम सिया की बात चले जहाँ जहाँ से राम की सेना गुजर रही उमड़ घुमड़ कर जय जय ना

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

0: हाथी ऐसे ही एक किनारे पर खड़ी थी। वक्त के भंवर पैरों से लिपटे हुए थे, वक्त की गर्दिश तेज थी और पांव रोके नहीं रुकते थे।
1: Dagin,

जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया। मारूं के छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या। जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया। मारूं के छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या। जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया।

ये इल्जाम है। सीधे साधे भोले भाले लोगों को सताना तेरा काम है, मुजरिम तेरा नाम है, तुझ पे ये इल्जाम है। सीधे साधे भोले भाले लोगों को सताना

तो होते हैं बातों से को मानते वो नहीं, कुछ जानते वो नहीं, पहचानते वो नहीं, लातों के जो भूत होते हैं बातों से तो मान...

कैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया। मारूं कि छोड़ू तेरी टांगे तोड़ू, बता तेरी मर्जी है क्या। बोल कैसे को तैसा मिला, कैसा मजा।

जान सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा।

आंखों से हटाया चश्मा आंखें तो मिलाओ जी, दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी, अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी, उनके फ्यूचर सन इन लॉ की बात उनसे करवाओ।